जी हाँ, जारी है कलाकार बेमिसाल का सफर। और आपको बता दें कि आज कलाकार बेमिसाल के जरिए हम बात कर रहे हैं खूबसूरत अदाकारा आशा पारेख जी की। सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया और साथ ही 2020 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया। आशा जी को 2002 में फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला और फिल्म कटी पतंग के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इनके अलावा और भी ढेरों सम्मान और पुरस्कार आशा पारेख जी के नाम हैं।

आपको बता दें कि 1998 से 2001 के बीच आशा पारेख जी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की पहली महिला चेयरपर्सन रही। 2017 में उनकी ऑटोबायोग्राफी द हिट गर्ल के नाम से प्रकाशित हुई और आशा पारेख जी की अपनी एक डांस एकेडमी भी है कारा भवन के नाम से, जहां वे अक्सर अपना समय बिताती हैं। तो आज आशा पारेख जी के बारे में हमने बात की कलाकार बेमिसाल के जरिए। उम्मीद है आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा और हम बस यही कामना करते हैं कि आशा जी हमेशा खुश रहें और ऐसे ही मुस्कुराती रहें। फिलहाल आपको छोड़े जाते हैं एक सुपरहिट गाने के साथ, फिल्म तीसरी मंजिल से। इस गीत के बाद आप सुन सकेंगे समाचार।

फ्रीक्वेंसी 97.2 मीटर अर्थात 1521 किलो हर्ट्ज और 7104 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। आज सन 2026 अक्टूबर महीने की 2 तारीख वह दिन है शुक्रवार। अब आरंभ होता है हमारा आज का प्रसारण। अब से लेकर रात्रि 9:16 बजे तक प्रसारित किए जाने वाले तमाम कार्यक्रमों को आम श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए ड्यूटी पे उपस्थित रहेंगे प्रसारण सहायक श्री थुतन दाशी, नई दिनकश में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री न्यूटन बोरा और श्री तानिंग ताको, ट्रांसमीटर में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री अश्युत बर्मन और श्री हेमंत स्वर्गरे, मनपा में उद्घोषक श्री सांगे ताशी तथा अन्य सहकर्मियों के साथ मैं हूं आज की

ये आकाशवाणी का टॉन केंद्र है। समय दोपहर के 2 बजने वाले हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम के आरंभ में पहले आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित मिड डे न्यूज दोपहर 2 बजे तथा 2:15 पर दोपहर समाचार। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें।

0: Kumkumahor and Dheeraj Bomadevra finished runners-up after losing 3-5 to China in a closely contested final. In sailing, Netra Kumanan won the bronze medal in the women's dinghy event. The 29-year-old Indian sailor finished third with overall 14 points. With these performances, India climbed to sixth position in the overall medal standings. The country's medal tally rose to 72 medals, comprising 12 gold, 25 silver and 35 bronze. The Indian Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over Arunachal Pradesh for the day. IMD said conditions are likely to become favourable for further withdrawal of the southwest monsoon from remaining parts of Punjab, Haryana, Rajasthan, Uttar Pradesh and most parts of Gujarat and Madhya Pradesh during the next 24 hours. The Met Department said thunderstorms and lightning conditions will continue over Andhra Pradesh, Kerala, Mahe, Sub-Himalayan, West Bengal and Sikkim till tomorrow. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi speaks to pilot of Fly Dubai, Captain Smit Machar, applauds his bravery and wishes him a quick recovery. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal holds bilateral meetings with his counterparts from France, Canada, Saudi Arabia and South Korea on the sidelines of the G20 trade ministers' meeting to strengthen trade relations. Nation pays homage to father of the nation Mahatma Gandhi and former Prime Minister Lal Bahadur Shastri on their birth anniversary today. IMD forecasts heavy rainfall over Arunachal Pradesh for today, says conditions are favourable for further withdrawal of southwest monsoon from northwest India. And in Asian Games, Lovlina Borgohain clinches gold medal in women's boxing 75kg category. Total medal tally rises to 72, including 12 gold. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्लाई दुबई के पायलट कैप्टन स्मित मच्छार से बात की उन्होंने कैप्टन की बहादुरी की सराहना की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक से अलग व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए फ्रांस कनाडा सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया के समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की कृतज्ञ देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है मौसम विज्ञान ने आज अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया दक्षिण पश्चिम मानसून के कमजोर पड़ने की संभावना एशियाई खेलों में लवलीना बोरगोहाइन ने महिला मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता 12 स्वर्ण सहित पदकों की संख्या बढ़कर 72 हुई अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बहादुर भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार से बात की उन्होंने दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट में अपने सह पायलट के हमले को नाकाम करते हुए 180 लोगों की जान बचाई थी कैप्टन मच्छार ने प्रधानमंत्री को अपने अनुभव के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि उस घटना के दौरान उन्हें किस बात से साहस मिला प्रधानमंत्री ने उनकी बहादुरी की सराहना की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की श्री मोदी ने कहा कि पूरा देश उनकी कुशलता के लिए प्रार्थना कर रहा है प्रधानमंत्री ने स्मित के जज्बे की सराहना करते हुए कहा कि देश गर्व से कह सकता है कि भारतीय वे नहीं हैं जो जान लेते हैं बल्कि वे हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं
2: आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की और सबसे बड़ी बात 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूं
1: बातचीत के दौरान भावुक कैप्टन स्मित ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी उनके सबसे बड़े आदर्श हैं उन्होंने प्रधानमंत्री का फोन आने पर अपनी खुशी और गर्व का अनुभव किया
3: उस मोमेंट में सर मैं अपनी लाइफ के लिए लड़ रहा था मैं एक ऐसा मोमेंट था जब मेरे को रियलाइज हुआ कि अगर मैंने कुछ नहीं किया जब मैं नीचे गिरा हुआ था तब मुझे ऐसा सोच रहा था कि एयरक्राफ्ट नीचे जा रहा है और बाकी सबकी भी उतनी उसमें रोल था बट जान के मैं एक सिर्फ पॉजिटिविटी में मैं जब भी मेरे को डर होता है मुझे एक ही चीज आती है मैं सिर्फ हनुमान चालीसा बोलता हूँ उस टाइम पे भी मैं वैसे हनुमान चालीसा ही बोल रहा था।

0: वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक से अलग फ्रांस, कनाडा, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया के व्यापार मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में संबंधित देशों के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट।
1: फ्रांस के विदेश, व्यापार और आर्थिक मामलों के मंत्री निकोलस फोर्सिये के साथ बैठक में श्री गोयल ने व्यापार और निवेश बढ़ाने, भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द पूरा करने तथा विमान निर्माण, यूपीआई के एकीकरण और संयुक्त नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ बैठक में दोनों देशों ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर जारी वार्ता की समीक्षा की और इसे जल्द आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने मार्च में इस समझौते की शुरुआत की थी। इसका लक्ष्य 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को $50 अरब तक पहुंचाना है। सऊदी अरब के वाणिज्य मंत्री माजिद बिन अब्दुल्ला अल कसाबी के साथ बैठक में श्री गोयल ने भारत और खाड़ी सहयोग परिषद के बीच मुक्त व्यापार समझौते के लिए जारी बातचीत की प्रगति पर चर्चा की। समाचार कक्ष से अनुपम मिश्र।
0: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए श्री मोदी के विचार बहुत अच्छे हैं। एक सार्वजनिक मंच पर राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के कूटनीतिक प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक शांति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से की गई सराहना से प्रत्येक भारतीय को अपार गर्व महसूस होता है। श्री शाह ने कहा कि महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर आया पुतिन का ये बयान दर्शाता है कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक शांति के लिए एक विश्वसनीय आवाज बनकर उभरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में जारी युद्ध और संघर्ष के माहौल में गांधी जी का शांति और अहिंसा का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सत्य और अहिंसा में महात्मा गांधी का अटूट विश्वास, न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और हर व्यक्ति की गरिमा में उनका गहरा विश्वास मानवता को प्रेरित करता रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी युगों में बापू के आदर्श मानवता के लिए पथ प्रदर्शक बने रहेंगे। महात्मा गांधी की जयंती आज वैश्विक स्तर पर भी मनाई जा रही है। कई देशों में भारतीय राजनयिक मिशनों ने इस अवसर पर गांधी जी की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की और सत्य, अहिंसा तथा शांति के उनके संदेश को याद किया। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 122वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में हुआ था। इसे अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने विजय घाट स्थित समाधि पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और एल मुरुगन सहित कई अन्य मंत्रियों, सांसदों तथा विद्यार्थियों ने आज नई दिल्ली स्थित संविधान सदन में महात्मा गांधी और लाल

0: बहादुर शास्त्री को पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन, कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी दोनों महान नेताओं को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। गांधी जयंती के अवसर पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज गोयल ने आज नई दिल्ली में खादी महोत्सव का उद्घाटन किया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12-13 वर्षों में खादी ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं।
1: खादी युवाओं के लिए फैशन स्टेटमेंट बन गया है। आज खादी के देश भर में फैशन शो हो रहे हैं। युवा मोदी जैकेट पहन रहा है, मोदी कुर्ता पहन रहा है, युवा हमारी खादी की कॉस्मेटिक खरीद रहा है, खादी के ग्रामोद्योग उत्पाद खरीद रहा है। खादी की कुर्ती हो, जैकेट हो, वो उत्पाद जो कभी गांव गलियों से बाहर नहीं निकल पाते थे, आज वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खादी अपना जलवा पूरे देश में बिखेर रही है। पिछले 12-13 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खादी कई गुना बढ़ी है।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आज थिरु के कामराज की पुण्यतिथि पर उपराष्ट्रपति भवन में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधा कृष्णन ने कहा कि थिरु के कामराज ने अपना जीवन राष्ट्र सेवा और आम जनता के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको अटल सुरंग के माध्यम से इस दृष्टि को साकार रूप देने का एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।
2: विश्व प्रसिद्ध रोहतांग दर्रे के नीचे कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में निर्मित अटल टनल आधुनिक इंजीनियरिंग और सीमा सड़क संगठन की तकनीकी क्षमता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। देश की महत्वपूर्ण आधारभूत और सामरिक परियोजनाओं में शामिल अटल टनल, जहां प्रदेश के कुल्लू व जनजातीय जिला लाहौल स्पीति को वर्ष भर हर मौसम में जोड़े रखती है, वहीं आज हिमाचल प्रदेश के विकास, पर्यटन और सामरिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण पहचान बन चुकी है। समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित 9 किलोमीटर से अधिक लंबी अटल टनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर 2020 को किया था। इस पर करीब 3,200 करोड़ रुपए की लागत आई है। अटल टनल के बन जाने से क्षेत्र के लोगों के जीवन में उल्लेखनीय सकारात्मक बदलाव आया है। लाहौल स्पीति जिला मुख्यालय केलांग निवासी सोनम जांगपो ने बताया कि अटल टनल स्थानीय लोगों के लिए परिवहन, व्यापार, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी आवश्यक सेवाओं तक पहुँच को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने इस ऐतिहासिक सौगात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है।
3: अटल टनल जो खुलने से पहले हमें रोहतांग टॉप होके कुल्लू मनाली जाना पड़ता था, जिससे हमें काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जैसे ही टनल खुला, उसके बाद स्वास्थ्य सुविधाएं भी हम इजिली, इमरजेंसी कभी भी कुछ भी रहता है, हम इमीडिएट 1-2 घंटे के अंदर कुल्लू पहुंच जाते हैं। हमारे जो फसलें हैं, जो किसान बागवान भाई है, उन सभी के लिए भी बहुत ज्यादा आसानी हो गई है। हम केंद्र सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
2: अटल टनल रोहतांग के बनने से जहां हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिला है, वहीं इसके माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों, खासतौर पर लेह लद्दाख के लिए वर्ष भर आवागमन और अधिक सुगम हो गया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में पंजाब के हॉकी ओलंपियन राजेंद्र सिंह सीनियर के प्रयासों की सराहना की थी। एक रिपोर्ट।
4: ओलंपियन राजेंद्र सिंह 1980 ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली इंडियन हॉकी टीम का हिस्सा थे। उन्होंने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच 1982 चैंपियंस ट्रॉफी में खेला था, जिसे इंडिया ने राजेंद्र सिंह द्वारा 3 पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान से जीता था और ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। वह 1990 में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी साई से जुड़े और अपना कोचिंग करियर शुरू किया। उनके समय में सब जूनियर और जूनियर हॉकी टीमों ने कई नेशनल अवार्ड जीते। उन्होंने आकाशवाणी को बताया कि राउंड ग्लास अकादमी पंजाब में 60 हॉकी अकादमियां चला रही है, जिसमें 6-8 साल की उम्र के लड़कियों समेत 3,000 खिलाड़ी इस राष्ट्रीय खेल की बारीकियां सीख रहे हैं।
5: मैं आभारी हूं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने मन की बात में मेरा जिक्र किया और मुझे मेरे काम की सराहना की। मैं पिछले 5 वर्षों से राउंड ग्लास स्पोर्ट्स अकेडमी के साथ युवाओं को हॉकी को आगे ले जाने के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहा हूं। प्रधानमंत्री जी के ये प्रेरणादायी शब्द सिर्फ मुझे ही नहीं, बल्कि मेरे जैसे और साथी, कोचेस, ओलंपियन

0: उनको भी प्रेरणा देंगे।
1: उन्होंने भारत के लिए मजबूत हॉकी टीम बनाने के लिए काबिलियत वाले युवाओं को कोचिंग देते रहने का भरोसा दिया। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
2: और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
3: जापान एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। आज मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक अपने नाम किया। लवलीना ने चीन की बाउ जी को हराकर भारत के लिए महिला मुक्केबाजी में 12 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। ये एशियाई खेलों में महिला मुक्केबाजी में भारत का दूसरा स्वर्ण पदक है। भारतीय महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। हालांकि पुरुष रिकर्व टीम को फाइनल में दक्षिण कोरिया से हारकर रजत पदक से संतोष करना पड़ा। पुरुषों की सेपक टकरा के सेमीफाइनल में भारत को जापान से हारकर कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। भारत पदक तालिका में 72 पदकों के साथ छठे स्थान पर पहुंच गया है। इनमें 12 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने सभी पदक विजेताओं को बधाई दी है।
2: मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों और गुजरात तथा मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए मौसम की परिस्थितियां अनुकूल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्लाई दुबई के पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार से बात की। उन्होंने कैप्टन की बहादुरी की सराहना की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। कृतज्ञ देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। एशियाई खेलों में लवलीना बोरगोहाइन ने महिला मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली के निशान प्रसारित दोपहर समाचार। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2:30 हो गए हैं। लीजिए श्रोता, प्रस्तुत है भक्ति गीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम वंदना में आइए पहले सुनते हैं गांधी स्मृति।

0: गांधी स्मृति। हरिजनों पर अपने विचार प्रकट करते हुए गांधी जी ने कहा है कि हरिजनों को लोग आज अपना सेवक और गुलाम मानने लगे हैं, पर वस्तुतः वर्णाश्रम के चारों वर्ण ही सेवा के आधार पर बनाए गए थे। किसी का कार्य था धर्म का पालन कराना, तो किसी का धर्म की रक्षा करना, किसी का कार्य था देश की समृद्धि के लिए उद्योग करना, तो किसी का कार्य था सेवा के अन्य कार्य टहल करना। अतः हरिजन को गुलाम मानकर एक पंचम वर्ण चलाना सरासर अन्याय है। आज अन्य लोगों की तरह ही हरिजन को भी विद्वान और व्यवसायी होने का अधिकार है। लीजिए सुनिए हरिजनों पर बापू जी का प्रवचन।
1: अभी आज मैं आपको हरिजनों की बात सुनाना चाहता हूँ, तो वो तो हमारी शर्म के लिए है। रोहतक में हरिजन जिला में कहो तो वहाँ हरिजन तो हर जगह पे पड़े हैं, तो वहाँ हरिजन कहते हैं। तो वो मीठा ऐसा है तो वहाँ तो जात लोग पड़े हैं, शायद अहिर लोग भी पड़े हैं, तो उसी जगह पे हैं। तो उनके दिल में कुछ ऐसा ही हो गया है तो हरिजन वो तो हमारे गुलाम है, तो उनके पास से तो जो कुछ काम देना है हम लेंगे। और पीछे वहां भी देखो हक की बाटा जाए, हक से लेंगे, क्योंकि वो तो हरिजन है ना, तो वो तो जन्म से ही हमारी गुलामी करने के लिए पैदा हुए हैं। उसको पानी चाहिए तो पानी हम दे तो पिए, न दे तो प्यासे रहे। खाना चाहिए हम दे तो खाए और नहीं तो भूखा रहे। और दलना या दे तो हम दे तो ठीक है, और न दिया तो वो हमसे हक से कुछ ले नहीं सकते हैं। तो इसको तो मैं तकबरी मानता हूँ। तो अंग्रेजी सल्तनत चलती थी तब भी ऐसा करता था, लेकिन अब तो वो चीज ज्यादा बन गई है। तो हरिजन बेचारे वो तो गरीब रहते हैं, मेरे पास आ गए कि हमारे पर तो आज ऐसी गुजर रही है, उसका कोई चारा है, हम कुछ कर सकते हैं कि हम

हमको तो अभी गुलामी में रहना चाहिए कि हम मर जाएं, कि वहां से रोहतक जिला को छोड़ दें, क्या करें। अभी वो छोड़ भी नहीं सकते, ये एक समझने लायक बात है, क्योंकि वो तो नहीं मारे उसको, कि जाते हैं कहा, रहते हैं कि नहीं, और इतना काम करते हैं कि नहीं, क्योंकि वो छोड़ दे बिल्कुल, तब पीछे इसी बात पर रहना चाहते, उसका काम बिगड़ जाता है और वो तो कभी करने वाले नहीं है, इसलिए उनका काम तो बिगड़ता है। लेकिन हरिजन को तो गुलामी ही करना है, ऐसा हो जाता है। तो मेरे पास आ गए, वो तो बेचारे वो मजलिसा में पढ़ते हैं, कोई तो बहुत आगे पढ़ते हैं, कोई छोटा थोड़ा सा पढ़े पढ़े हैं, लेकिन पढ़ते हैं, और काम भी सीखते हैं, उद्योग भी सीखते हैं, तो वो तो उनकी बात हुई। लेकिन वो लोग जो उनको ताराज कर रहे हैं, उनका क्या कहें। तो मैंने आपको ख्रिस्तियों को तो कहा, अब भी हरिजनों पर, और अभी तो ऐसा हो गया ना, अच्छा अंग्रेजी सत्र चलती थी तो कभी तो हमको मारपीट कर सकते थे, हमको दंड कर सकते थे, अभी हमको आज कौन दंड करेंगे, हम सबको दंड दे सकते हैं, और हमको अगर जज के सामने ले जाए तो जज को हम दया देंगे, जज हमको क्या करने वाला था। ऐसी तकबरी हमारे में पैदा हो जाए तो उसका नतीजा यही आ जाता है कि वो हरिजन है तो तबाह होते हैं। तो इसलिए मैंने तो सोचा कि आज की शाम है, उसमें आपको मैं हरिजनों की तो करोड़ कथा बोली सुनाऊंगा, कि अगर इतना भी हम नहीं कर सकते हैं कि जिसमें तो हमारा धर्म पड़ा है, कर्म पड़ा है, कि उनको जो आज तक हम अछूत मानते आए हैं, गुलाम जैसे मानते आए हैं, वो तो हमने बड़ी बड़ा अधर्म किया, गलती की, पाप किया, उसका प्रायश्चित रूप में तो हरिजन सेवक संघ बना है, प्रायश्चित रूप में बहुत हम कर लेते हैं, बहुत किया भी है, लेकिन सब हिंदुओं ने किया है, करोड़ों की आप संख्या में हिंदू है तो वो तो एक सारा दरिया पड़ा है, तो जिसने उसमें हिंदू है उन्होंने सब अपना ले लिए है। तो मुझको ये करोड़ कथा आपको सुनाने भी क्यों पड़े। तो जब तक हम ऐसा करते हैं, और अभी करें, अंग्रेजों के राज्य में तो करते थे तो अंग्रेजों को गालियां देते थे, हाँ वही ऐसे है, नहीं तो हम अच्छे हो जाते, लेकिन अभी तो चले गए तो हम अच्छे हुए कि हम तो बुरे हुए। तो हमको समझना चाहिए तो उन पर हमारे ऐसे जुर्म नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझको ये डर है कि ऐसा भी हम जातियां करते हैं और करते थे पहले जमाने में, उससे ज्यादा उसका सबब ये है, क्योंकि हमारे दिल में एक प्रकार की झूठी हिम्मत आ गई है। तो अभी मारो ख्रिस्तियों को, क्योंकि पहले से करो साफ के पीछे हम यही, तो पीछे हम जाके जाति स्थान बनाएंगे, आहिर स्थान बनाएंगे, और पीछे हम एक अपना बनाएगा, हिंदुस्तान का कोई नहीं बनाएगा। ये आखिर में हम नतीजे पर आते हैं। इसलिए मैं कहूंगा बार बार कि हमारे हरिजनों को तो अपनाना ही चाहिए, वो तो जैसे हम हिंदू हैं ऐसे ही है, वो कोई पंचम जाति है नहीं, पंचम जाति ऐसी चीज हिंदू धर्म में हो नहीं सकती है, चार वर्ण है सही, तो चार वर्ण का भी अर्थ ये तो है नहीं मेरे निगाह में, एक ऊंचा और दूसरा नीचा, लेकिन चार में सब जितने पैसे हो सकते हैं, तो एक का काम है कि धर्म सिखाना और करना, दूसरा का है कि धर्म का रक्षा करना, और तीसरा का काम है कि तिजारत करना, तो अपना पेट भर, अपना घर भरने के लिए नहीं, करोड़ रुपया पैदा करने के लिए नहीं, अपने लिए, लेकिन करोड़ पैदा करें और शुद्ध कोली हो, और वो सब प्रजा के लिए है, तो पीछे कोई तो सेवा करने वाले होने चाहिए, तो शुद्ध तो वो सेवा करे, लेकिन चारों साथ साथ खड़े रह सकते हैं, साथ साथ बेच सकते हैं, ऐसा कोई है ही नहीं कि जो शूद्र है वो पीछे बैरिस्टर बन गया तो बैरिस्टर नहीं कर सकता है, तो भी उसको तो शूद्र का ही मन सेवा का ही काम करना, सब सेवा है, जो धर्म सिखाता है वो भी सेवा करता है, जो रक्षा करता है वो भी सेवा करता है, जो तिजारत करता है वो भी सेवा करता है, और जो चाकरी नौकरी करता है, हमारा पानी भरता है, झाड़ू निकालता है, अनेक काम करता है, वो सब सेवा ही सेवा है, चारों सेवा है, लेकिन चारों सेवा क्षेत्र है, उसके लिए वो बनाया, उसके लिए पीछे किसी को वो धर्म सिखाता है, उसको ज्यादा सीखना पड़ता है, लेकिन उसका मतलब भी नहीं है कि वो छोड़कर कोई दूसरा करना चाहते हैं तो बड़ा पाप कर लेगा, ऐसा एक वर्णाश्रम धर्म तो पड़ा है, उसको भूल गए, उसका अनर्थ कर लिया, पीछे उसमें से तो अनेक जातियां पैदा की,

थोड़ी से पंचम भाव पैदा किया तो वो तो सब हमारी गलती है, हमारी दुष्टता कहो तो बोले हमारे हम धर्मों से हट गए इसलिए हमने किया। तो अगर हम आज के हमारे हाथ में बागडोर आ गई है तो हम हिंदू हम सिख सब कोई अपने अपने धर्म के मुताबिक चले, तब तो मैं समझता हूँ कि सब काम हो सकता है।

श्रोता भी आप सुने थे कार्यक्रम वंदना में गांधी स्मृति। आइए अब सुनते हैं जजी सिंह की आवाज में चंद देवभक्ति गीत।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही भक्ति गीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय 2:03 बज गए हैं।

लीजिए श्रोता, पेश है विभिन्न प्रांत का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। आज इस कार्यक्रम में आप सुनिए निफालू बू द्वारा गाए चनादोनिक तिगारो मिश्मी गीत।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही विनपेन का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:30 हो गए हैं। लीजिए श्रोताओ, अब पेश है कार्यक्रम मेरी बात। आज इस कार्यक्रम में आप सुनिए।

0: पेमश्री जेनमी दांग की छात्र सुक्षी तिथि फाजंग से एक वार्ता का विषय है पुस्तकें पढ़ने से हमारा दृष्टिकोण कैसे बदलता है।
1: नमस्कार आप सभी को आकाशवाणी तवांग से प्रसारित दैनिक कार्यक्रम मेरी बात में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं टीटी फाचंग पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय तवांग कक्षा 9वीं की छात्रा आज इस कार्यक्रम में

0: किताबें हमारे विचारों को दिशा देती है और हमारी सोच को गहराई प्रदान करती है। जब हम किताब पढ़ते हैं तो हम केवल शब्दों को नहीं पढ़ते बल्कि हम लेखक की सोच, उसके संघर्ष और उसके सपनों से जुड़ जाते हैं। इससे हमारे नजरिए में बदलाव शुरू होता है। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, किताबें वह आईना होती है जिसमें हम खुद को भी पहचान पाते हैं। किताबें वह अच्छा इंसान बनाने की सलाह देती है। वे ईमानदारी, सच्चाई और सम्मान जैसे मूल्यों को मजबूत करती है। किताबें हमें समय का सही उपयोग करना सिखाती है। किताबें हमें यह भी सिखाती है कि दुनिया को सिर्फ अपने नजर से नहीं बल्कि दूसरों की नजर से भी देखना चाहिए। जब हम किसी कहानी के पात्र का दर्द समझते हैं, तो हमारे भीतर संवेदनशीलता बढ़ती है। हम दूसरों के प्रति अधिक सहनशील और समझदार बनते हैं। इतिहास की किताबें हमें यह सिखाती है कि गलतियों से क्या सीख मिलती है। विज्ञान की किताबें हमें सोचने का नया तरीका देती है और सेहत की किताबें हमारे दिल और दिमाग दोनों को छू जाती है। एक प्रसिद्ध विचार है, जो किताबें नहीं पढ़ता वो सीमित सोच में जीता है और जो पढ़ता है वो खुले विचारों के साथ जीवन जीता है। आज के समय मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। जानकारी तो हमें हर जगह मिल जाती है लेकिन समझ और विवेक हमें किताब से ही मिलती है। किताबें हमें सिखाती है कि हर बात का उत्तर तुरंत नहीं होता, कुछ सवालों के लिए देरी और सोच की जरूरत होती है। महात्मा गांधी जी ने कहा था, अच्छी पुस्तकें मनुष्य की अच्छी मित्र होती है। किताबें हमारी सबसे बड़ी शिक्षक है। हम अक्सर सोचते हैं कि ज्ञान केवल स्कूल और किताबों की पढ़ाई से ही मिलता है, लेकिन यह सच नहीं। महान लेखकों, व्यक्तियों द्वारा लिखे गए किताब भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। किताबें पढ़ने से हमारी भाषा सुधरती है, हम अपने विचार बेहतर तरीके से व्यक्त कर पाते हैं और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। एक किताब कई बार हमें मुश्किल समय में सही राह दिखा देती है। कहानियां हमें सपने देखना सिखाती है, जीवनी हमें संघर्ष से डरना नहीं सिखाती और प्रत्येक पुस्तकें हमें हार न मानने की शक्ति देती है। एक बहुत गहरी बात कही गई है, किताबें जल सकती है लेकिन उनसे निकले विचार कभी नहीं मरते। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि किताबें पढ़ना केवल एक शौक नहीं, यह व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया है। जो व्यक्ति पढ़ता है वो हर दिन थोड़ा और बेहतर बनता है। तो आइए हम सब मिलकर ये संकल्प ले कि रोज थोड़ा समय किताबों के लिए निकालेंगे, क्योंकि किताब हमारे सोच को बदलती है और सोच बदलने से पूरा जीवन बदल सकता है। धन्यवाद।
1: श्रोता, अभी आपने दैनिक कार्यक्रम मेरी बात के अंतर्गत पीएम श्री जैन विद्याओं के छात्रा सुक्षी टीटी फचांग से एक वार्ता सुना। वार्ता का विषय था, पुस्तकें पढ़ने से हमारा दृष्टिकोण कैसे बदलता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:34 हो गए हैं। लीजिए श्रोता, अब प्रस्तुत है महिलाओं पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम नारी संगीत। कार्यक्रम नारी संगीत का पहला गीत आइए सुनते हैं। फिल्म जब वी मेट से श्रेया घोषाल की आवाज में इस गीत को बोल दिया है इशात कामिल ने तथा संगीत दिया है प्रीतम ने।

सोनन किरकिरे के गीत पर श्रोताभ्य अपने फिल्म सिंगम से श्रेया घोषाल की आवाज में एक गीत का आनंद लिया। आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं, फिल्म राब्ता से अतीब असलम की आवाज में। इस गीत के रचयिता इशाद कामिल तथा संगीत दिया है जैम एड ने।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही महिला पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम नारी संगीत अब यहीं पर समाप्त हुआ।
1: जिंदगी की रोज की दौड़ में हम अक्सर चीजें भूल जाते हैं, पर अच्छा लगता है जब कोई आपका ख्याल रखता है, जैसे कि RBI ख्याल रखता है आपके अनक्लेम डिपॉजिट का।
2: अनक्लेम डिपॉजिट्स मतलब वो बैंक खाते जिसमें 10 साल या उससे अधिक से कोई लेन देन नहीं हुआ हो, ऐसे खाते RBI के DEA फंड में चले जाते हैं। अपने बैंक की किसी भी शाखा में जाकर अपनी KYC अपडेट कराइए और अपना अनक्लेम डिपॉजिट वापस पाइए।
1: RBI कहता है, जानकार बनिए,
2: सतर्क रहिए।
0: आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के दिन बजकर 50 मिनट हो गए हैं। लीजिए श्रोता, पेश है आधुनिक हिंदी फिल्मी गीत का कार्यक्रम गीत मंजरी। कार्यक्रम गीत मंजरी का पहला गीत आइए सुनते हैं फिल्म वीर से राहत फतेह अली खान और सुजन डिमेलो के आवाजों में। इस गीत को बोल दिए हैं अरुण भैरव ने और संगीत दिया है साजिद वाजिद ने।

अमित त्रिवेदी के संगीत पर श्रोताओं ने अपने फिल्म वांटेड से शान और श्रेया घोषाल की आवाज में गीत का आनंद लिया। आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं, बैडमैन फिल्म से मोहित चौहान के आवाज में। गीतकार

होम टाउन की वाइब एकदम नेक्स्ट लेवल है। पहाड़, कल्चर, खाना, ट्रेडिशंस और ढेर सारी स्टोरीज। अब टाइम है अपनी स्टोरी को इंडिया के स्टेज तक ले जाने का। जुड़िए जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज से और बनाइए 1 से 3 मिनट की वीडियो जो बताए कि आपका जिला कितना यूनिक है। और हाँ, प्राइज भी जबरदस्त है। डिस्ट्रिक्ट विनर्स 50,000, स्टेट विनर्स 2 लाख रुपए और नेशनल विनर्स 5 लाख रुपए। बस वेव्स ओटीटी पे रजिस्टर करें, माई वेव्स पर जाकर क्रिएटर प्रोफाइल बनाएं और अपनी वीडियो सबमिट करें। अरुणाचल के क्रिएटर्स, कैमरा उठाओ और अपनी स्टोरी दिखाओ।

प्रीतम के संगीत पर शताब्दी आपने फिल्म दिल तो बच्चा है जी से मोहित चौहान की आवाज में गीत का आनंद लिया। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, फिल्म हाईवे से एआर रहमान की आवाज में। इस गीत को बोल दिया है इरशाद कामिल ने और संगीत दिया है एआर रहमान ने।

0: एक सवाल पूछूं, अगर कल कोई आपके डिस्ट्रिक्ट घूमने आए तो आप उसे सबसे पहले कहाँ ले जाएं?
1: सोचिए, मैं किसी फेमस टूरिस्ट प्लेस की बात नहीं कर रही, मैं उस जगह की बात कर रही हूँ जो सिर्फ आपकी लिए खास है। शायद वो आपका फेवरेट सनसेट पॉइंट,
0: या फिर वो स्वाद वाला एड्रेस या भुजबल वाली गली, या फिर कोई ऐसा मेला जिसके बारे में बाहर के लोग कम ही जानते हैं।
1: बस यही तो आपकी कहानी है और इस कहानी को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का समय आ गया।
0: अपने डिस्ट्रिक्ट की कहानी रिकॉर्ड कीजिए और दिखाइए कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक नया जेम छुपा है। तो इंतजार किस बात का? जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज में पार्टिसिपेट कीजिए, 1 से 3 मिनट का वीडियो बनाइए और माई बेस पे अपलोड कीजिए और आप भी जीत सकते हैं 5 लाख, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट के पास है कई कहानी।

रजत अरोड़ा के गीत पर शताब्दी अपनी फिल्म चांदनी चौक टू चाइना से शंकर महादेवन और श्रेया घोषाल की आवाजों में एक गीत सुना। आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म दिल्ली सिक्स से मोहित चौहान के आवाज में। इस गीत को बोल दिया है प्रसन्न जोशी ने और संगीत दिया है आर रहमान ने।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म जरा हटके जरा बचके से अरिजीत सिंह और सचिन जिगर के आवाजों में। गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य और संगीत दिया है सचिन जिगर ने।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही आधुनिक हिंदी फिल्मी गीत का कार्यक्रम गीत मंजरी अब यहीं पर समाप्त हुआ। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 4:30 हो गए हैं। लिए श्रोताओं, प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग। कार्यक्रम राग रंग में आज आप सुनिए उस्ताद बड़े गुलाम अली खान से जे जे वंती राग।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग के अंतर्गत उस्ताद बड़े गुलाम अली खान से जय जयवंती राग। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 4:45 होने वाले हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार 4:45 पर तथा अंग्रेजी में समाचार 4:55 पर। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें।

0: यह आकाशवाणी है, अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्लाई दुबई के पायलट कैप्टन स्मिथ मछार से बात की। उन्होंने कैप्टन की बहादुरी की सराहना की और उन्हें शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक से अलग व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए फ्रांस, कनाडा, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया के समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक की। कृतज्ञ देश आज महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल टैट केटीपाल नाइक ने महात्मा गांधी की 157वीं जयंती के अवसर पर राज्यवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने लोगों से महात्मा गांधी के शांति और अहिंसा के मार्ग पर चलने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज ईटानगर नगर निगम IMC के तकनीक आधारित पहल IMC ऐप का शुभारंभ किया। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। दक्षिण पश्चिम मानसून के कमजोर पड़ने की संभावना। और एशियाई खेलों में लवलीना बोरगोहाई ने महिला मुक्केबाजी में 75 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 12 स्वर्ण सहित पदकों की संख्या बढ़कर 72 हुई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बहादुर भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मछार से बात की। उन्होंने दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट में अपने सह पायलट के हमले को नाकाम करते हुए 180 लोगों की जान बचाई थी। कैप्टन मछार ने प्रधानमंत्री को अपने अनुभव के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि उस घटना के दौरान उन्हें किस बात से साहस मिला। प्रधानमंत्री ने उनकी बहादुरी की सराहना की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।
1: आपकी हिम्मत ने, आपके धैर्य ने और आपकी सूझबूझ ने

0: एंड फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में इतने निर्णय कर लिए आपने और इतने लोगों की जान बचाई और आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हम हिंदुस्तानी जान लेने वाले लोग नहीं है, जान बचाने वाले लोग। और आपने अपने शरीर पे इतना बड़ा घाव हुआ, आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता। स्मित, अब मैं आपसे सुनना चाहूंगा।
1: सर, मेरे लिए मैं सर से भी बोल रहा था, आप मेरे सबसे बड़े एक्ट्रेस और मेरे को इनसे कॉल करके मेरी ऑफिसाइ कर रहे, मुझे बहुत बहुत बहुत गर्व फील हो रहा है।
2: वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक से अलग फ्रांस, कनाडा, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया के व्यापार मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों से संबंधित देशों के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट।
3: फ्रांस के विदेश, व्यापार और आर्थिक मामलों के मंत्री निकोलस फोरसिए के साथ बैठक में श्री गोयल ने व्यापार और निवेश बढ़ाने, भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द पूरा करने तथा विमान निर्माण, यूपीआई के एकीकरण और संयुक्त नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ बैठक में दोनों देशों ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर जारी वार्ता की समीक्षा की और इसे जल्द आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने मार्च में इस समझौते की शुरुआत की थी। इसका लक्ष्य 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को 50 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। सऊदी अरब के वाणिज्य मंत्री माजिद बिन अब्दुल्ला अल कसाबी के साथ बैठक में श्री गोयल ने भारत और खाड़ी सहयोग परिषद के बीच मुक्त व्यापार समझौते के लिए जारी बातचीत की प्रगति पर चर्चा की। समाचार कक्ष से अनुपम मिश्र।
2: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए श्री मोदी के विचार बहुत अच्छे हैं। एक सार्वजनिक मंच पर राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के कूटनीतिक प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज कहा है कि वैश्विक शांति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से की गई सराहना से प्रत्येक भारतीय को अपार गर्व महसूस हो रहा है। श्री शाह ने कहा है कि महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर आया पुतिन का यह बयान दर्शाता है कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक शांति के लिए विश्वसनीय आवाज बनकर उभरा है। कृतज्ञ देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने कहा है कि दुनिया के कई हिस्सों में जारी युद्ध और संघर्ष के माहौल में गांधी जी का शांति और अहिंसा का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि सत्य और अहिंसा ने महात्मा गांधी का अटूट विश्वास, न्याय के प्रति उनकी पक्की प्रतिबद्धता को हर व्यक्ति की गरिमा का उनका गहरा विश्वास मानवता को प्रेरित करता रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी युगों में बापू के आदर्श मानवता के लिए पथ प्रदर्शक बने रहेंगे। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड KT परनायक ने महात्मा गांधी की 157वीं जयंती के अवसर पर राज्यवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि स्वच्छ भारत दिवस के अवसर पर मनाया जाने वाला यह अवसर सभी को महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलने के लिए प्रेरित करता रहेगा। राज्यपाल ने कहा है कि महात्मा गांधी ने अपने पूरे जीवन में सत्य, अहिंसा, शांति और स्वच्छता के मूल्यों को समर्थन किया। उन्होंने कहा है कि गांधी जयंती केवल स्मरण का दिन नहीं है, बल्कि सत्य, ईमानदारी, आत्मनिर्भरता और मानव सेवा के आदर्शों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को फिर से मजबूत करने का अवसर भी है। राज्यपाल ने कहा है कि महात्मा गांधी का मानना था कि किसी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उनके लोगों में निहित होती है, विशेषकर उनके युवाओं में। उन्होंने कहा है कि महात्मा गांधी ने अपने जीवन के और कार्यों के माध्यम से पीढ़ियों को साहस, अनुशासन और उद्देश्य की भावना के साथ व्यापक जनहित के लिए कार्य करने की प्रेरणा दी।

0: मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने लोगों से महात्मा गांधी की शांति और अहिंसा के मार्ग पर चलने का आह्वान किया। वे आज ईटानगर के स्टेट बैंकेट हॉल में स्वच्छता ही सेवा 2026 के तहत आयोजित स्वच्छ भारत दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री खांडू ने स्वच्छता बनाए रखने और स्थानीय समुदायों को स्वच्छ एवं स्वस्थ रखने की जन भागीदारी की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने गांधी जयंती के अवसर पर नागरिकों से महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा, सादगी और सेवा के आदर्शों को अपनाने को कहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वच्छ जीवन शैली के प्रति जागरूकता अभियान के विभिन्न क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए स्वच्छता वाहन का औपचारिक शुभारंभ भी किया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज ईटानगर नगर निगम IMC की तकनीक आधारित पहल IMC ऐप का शुभारंभ किया। इस ऐप का उद्देश्य कचरा संग्रहण व्यवस्था को अधिक स्मार्ट, तेज और प्रभावी बनाना है। ऐप के माध्यम से कचरा उठाने वाले वाहनों की लाइव ट्रैकिंग की जा सकेगी। इसके अलावा लोग कचरे से भरे या ओवरफ्लो हो रहे कूड़ेदान की सूचना दे सकेंगे। ऐप में पहले और बाद की तस्वीरें दर्ज की करने की सुविधा शामिल है, जिससे शिकायत किए गए कचरे के हटाए जाने की निगरानी और या की जा सकेगी और समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में पंजाब के हॉकी ओलंपियन राजेंद्र सिंह सीनियर के प्रयासों की सराहना की। एक रिपोर्ट।
1: ओलंपियन राजेंद्र सिंह 1980 ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली इंडियन हॉकी टीम का हिस्सा थे। उन्होंने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच 1982 चैंपियंस ट्रॉफी में खेला था, जिसे इंडिया ने राजेंद्र सिंह द्वारा 3 पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान से जीता था और ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। वह 1990 में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी SAI से जुड़े और अपना कोचिंग करियर शुरू किया। उनके समय में सब जूनियर और जूनियर हॉकी टीमों ने कई नेशनल अवार्ड जीते। उन्होंने आकाशवाणी को बताया कि राउंड ग्लास अकादमी पंजाब में 60 हॉकी अकादमियां चला रही है, जिसमें 6 से 8 साल की उम्र के लड़कियों समेत 3,000 खिलाड़ी इस राष्ट्रीय खेल की बारीकियां सीख रहे हैं।
2: मैं आभारी हूं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने मन की बात में मेरा जिक्र किया और मुझे मेरे काम की सराहना की। मैं पिछले 5 वर्षों से राउंड ग्लास स्पोर्ट्स अकेडमी के साथ युवाओं को हॉकी को आगे ले जाने के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहा हूं। प्रधानमंत्री जी के ये प्रेरणादायी शब्द सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे जैसे और साथी कोचेस ओलंपियन को भी प्रेरणा दें।
1: उन्होंने भारत के लिए मजबूत हॉकी टीम बनाने के लिए काबिलियत वाले युवाओं को कोचिंग देते रहने का भरोसा दिया। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटों में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों और गुजरात व मध्य प्रदेश में ज्यादातर हिस्सों में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की वापसी के लिए मौसम की परिस्थितियां अनुकूल है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 4 जिलों वेस्ट कामेंग, पापुमपारे, लोअर सुबनसिरी और कमले के लिए अगले 24 घंटों में गरज के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शब्दशाची भट्टाचार्य। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टुडे स्पोक टू ब्रेव इंडियन पायलट कैप्टन स्मिथ मच्चर, हुज हीरोइक्स इन थ्वर्टिंग ऑफ एन अटैक बाय हिज को पायलट सेव्ड 180 लाइव्स ऑन द फ्लाई दुबई फ्लाइट फ्रॉम दुबई टू तेल अवीव। Captain Mutcher gave details of his experience to the Prime Minister and spoke of what gave him courage during the incident. The Prime Minister applauded his bravery and wished him a quick recovery. Mr. Modi said the whole country is praying for him. He said Captain Smith's courage, presence of mind and composure saved many lives. The Prime Minister lauded Smith's spirit, saying that the country can proudly say that Indians are not those who take lives, but those who were willing to risk their lives to save others. During the interruption, an emotional Smith shared that PM Modi is his biggest idol and expressed how special and proud he felt to receive the call. The nation pays homage to the father of the nation, Mahatma Gandhi, on his 157th birth anniversary today. A Sarva Dharma Prarthana Sabha was held at Bapu Samadhi, Rajghat, in the national capital. President Draupadi Murmu attended the Sarva Dharma Prarthana this morning and paid royal tributes to the father of the nation. Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Lok Sabha Speaker Om Birla, Indian Housing and Urban Affairs Minister Manohar Lal and Delhi Chief Minister Rekha Gupta also paid tributes to Mahatma Gandhi at Rajghat. The nation also pays homage to former Prime Minister Lal Bahadur Shastri on his 122nd birth anniversary today.

0: विजयघाट का कुशे लाल बहादुर शास्त्री पेनक समाधि का मिंतो पुया कुदु युजुमुर गेगप जापान का शेंदुंग नो एशिया गेम चिमतेंदर का जगर से मुथुया परसे नमदा तुंदो निसुनी देश बॉक्सिंग कक जिगे किलो किसुम चिलम तेजन का जगर लवलीना बोर्गोहेन सी सर्क तम येगतबंबुर लवलीना सी गेना गेगप कक जी बाउ शल शिरत्या लो चिन्मेक यू क्यागर शल मुवच बॉक्सिंग देंदुर का सर्क तम येगतबंबुर जगर्क मुवचक म्लतन रुगा से थिंग ची ओलंपिक चैंपियन युंगन लो कोरिया शल लेंग सुमसे शिरत्या सर्क तम नदा येगतबंबुर शिंतर ग्यागर्क पूवच नंक रिकर्प म्लदन रुगा फाइनल का लोकोरिया शक शुरिया मुयक तम सी देव किंगोस रसमुर ग्यागर सी तत संबले सर्क तम चिंगने मुयक तम खेल लेंग निंग संग तम खेल चिलेंग कम्या क्युंदुम तम खेसम चिंगने गेगा थप्या अंग रुपुका ओमनुमुर सिंचन चम रोबोटी मुर्मुंडिंग सिंचन कुजब नरेंद्र मोदी से तमा ये खत्म कर जेदन केबो पाचल चमड़ी देश दिले चुसंबर नमस्ती लेखों से देश गति और नाचल प्रदेश का नाम दम छोटा कुप नियस नाओक निसुनी दोनों लेखों से युवा चुजे कलिब लेख नियचे गति पंजाब हरियाणा राजस्थान उत्तर प्रदेश गुजरात निंग मध्य प्रदेश कक्षा ने मंगचो का लोनुप चर्दुई ताओ उयुक नमजी नेदां तकता नियस नाउक निसुनी लेंगेन उद्धामची तिजिक नेचुई खाजिन शोचे सोपाना दूस लेंगेनां ता उदुक शोचे तुन्देक लेरिम कुंसल चिको सतुर देश उस लेरिमा उतलेक तारिक खलीची दिचे दिलिक चुर संगेक रिंसल तावंगा देंदिन जुया चिंदा चुचिपाक तारिक ती गोपा लावाप दिजिन जिक्तर कोचुया तरिक निसाक मिमंगशल जेगा थोजुकर तावन डिस्ट्रिक कोऑर्डिनेटर कमिटी काक चेयरमैन कुशुप तेंजिन जर्दिन तम्बा कैमरा सोजिस जनसा बेनमशल कंदिन जुगन तावंग लुंटिन लेकुं कुशुप टिशितर जिमुर
1: तवंग लुंटिन खंग लेरिम सनखन लंगे चमुशा चमडे देशी दिले शुरू द देशी नीतोंग खलिकुरो लोक चिंद छुपक तारिक नई इंबुर द देशी सेदंग जो गतं यागर गेगप चियुंशा दुजंग दे इंबुर इची द गया इना गतं गेगप कक पतं इचिंबो महात्मा गांधी जी देश ठुंगो दुजिन इंबुर महात्मा गांधी जी तंगतं गेगप का ठुंगसे द देशी ले लो ग्यानिंग केने चिनिस पेपंबुर इजाबोता देश गेगप चियुंग नेगा तंगि चिनबो महात्मा गांधी जी ठुंगा दुजिन गांधी जयंती ने सिसुंग शुदुंबुर द देश उद्दुजंग छे ताउदा लंगे नाशमर ने से संपति सिंगिना द संगे तोबा शके तुबक रिंसल अरुणाचल प्रदेश का तनि जुजु को क्यागर उजुंग ने कबे नंगो सो इंबुर गतंग गते शुंग ने कबे नंगो सो इंबुर डिस्ट्रिक्ट थरम का कबे नंगो सो इंबुर इत बाचा द रिमता जाति चाले कोचो सरमबुर इजाबो देश कुनसे लेरिमा गुशप तेंजन जोरदला पेपे ने शोसोनो तबिनंग चितंग क्यागर उशुंग मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एक्सपर्ट एडवाइजरी कमिटी का मेंबर इंबुर दादे नेकअप का बिनाशा किंगुर चे सेनाओ नो गिन दा गा दोसो दिल्ली के रिंसेल तनि जुजुक चे दा ओसो कोऑर्डिनेशन कमिटी चे सोनो बुर सोसोंग चे सोनो बुर ताउ सोसोंग को कोटे नंगन सोसो चे ते बिना चे कोदो नंबर इजाबोदा दादे बिना नेकअप का गा दोसो बुता रिलीज का कोऑर्डिनेशन कमिटी को बिना चेयरमैन इंबुर तनि जोदन ला पिसनिंग तिसि दिले नि छुर
2: तिसि दिले
1: लेसो ला दा दिसि ओतो तनि जोदन ला पिसि छुर को दं निंग ता लंगे ना से मान दि छु फुक छि ते ता तोम बे चिक सुमुक शो गा ता मि मंग नंग संग ये ग्रिंग सेल छि यु को ता गा दं को गप ते थबि किम बुर या बदा उजु थो गा कमे नंग गो सो रिम बु ता जाया जे गप थोरिम गप मार यक से कमे रिम बु माप ते मनंग नंग बुर इजा बदा तनि जोदन ला इना शना दा ति छु ना संग ये ग्रिंग सेल

0: diría, bueno, ayer llega 10 meses de nombre, 10 meses de nombre. Y yo creo que está eso, chico, volunteer se yo, pero está sonido poca, está mami, el imor, ITBP, SSB, na, necti, y yo creo que está police number, mami, na, number, sin de tao, de tal, volunteers, na, gozina, son, no, so, y no, mi mafti, mi tonda mafti, planta, na, llega a people, ladies, policing, mami, na, chede, la, o, ya, que no, todo, चलो वॉलंटियर से कोचिंग लेसन दो
1: ता सा ने का ना सेट प्लस द सिक्योरिटी मिन आउट कैटेगरी का ई मे रे उद्या पले दा ओसो मिन रिम सुम या या जिमा मी नाइन बु पुलिस इन बुरो चिक नाटक के दे मिन वॉलंटियरी या को सुबा चिक आप ती ता तन के सुम बुरो वॉलंटियरी इन बुरो कैटरिंग या कन बा चिक आप था छत ए जिक दा ओसो नोडल ऑफिसर बिन नाटक डिस्ट्रिक्ट का नाउ छडा लर्निंग सोनम सिरिंग ता को पेनिंग ओतो दी ओसो नंबर उद्या बोलता मिमंग ने आइ तेने ने ता मिन ओसो द मोई माप ती फिफ्टी मेरेला उद्या वॉलंटियरी या कन बा चिक तेने ने मिन खासन दिंग संग या छि मिन छले नम न नंग ता छंगरी निंग छि मिन उत का तम कना इबुर उता दे योर मेजरन बा छि मिन नम दा बा छि तोम या छि को थोंग ओ सखा दो इबुर उदा पले दा ता गा शरब जा चोला मे ngan छि शब्द रिंग दे मेरेला बिना मो दे दा ओतो छि पो वॉलंटियर का बिना छि को निगो नंबर द नोडल ऑफिसर छि प्रति आ छि बिना आई कार्ड निंग सेगा थी छि मकियर सेंट्रली इटनर योर निश्चय हो इबुर
0: इजे को दा ओतो छि संगे क्रिंसेल ब दा ओतो तमाम दातनी चुया मार वेस्ट कमिंग अप पेपर सकती तो शबे गोतो दिया शनि उतना मनु या ध्यान दे रोक नहीं गेन नाद ने में चनिंग चंग उदन बाचे नदा बिमो नगे यार जे के शुगन बाचे नबे शय यो निंग जिजि को चंग यो री बाचे न क्यों ने मिजु या जित पे ने जुदम ये ते नाद ने मोरे इजि को ताउ द मान न गदा द किमजे के गप चीते गदा बुटा लिमे तंग द दु के गप बिमो मा दु के गप का केर पे मक नो दत जे ने छु ने उदन जगा मजेरा ना
1: सेप्टेंबर तारीख थीचे गतांग DC conference hall ga meeting dia utuk jiji de minang jimba thakya de mapti jomdara sumbar ta ne ne jeda minang leke yak koida imbor thor thor da

मेरी में 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलो हर्ज और 7104 FM मेगा हर्ज पर ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 6:13 हो गए हैं। लीजिए श्रोता, प्रस्तुत है कार्यक्रम जरोखा। कार्यक्रम जरोखा में आप सुन पाएंगे हमारे केंद्र से आज शाम प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रम व कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारियां। तो आइए श्रोता, पहले आपको आज के शाम प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों से अवगत करवाते हैं। अब से थोड़ी देर बाद यानी संध्या के 6:20 पर मनपा कार्यक्रम जनलिम में सुन पाएंगे तवांग मठ के गेलोंग चंपा सोनम ओमसे और साथियों द्वारा शेदन जुनचक तुम्पा और मनला। शाम 7 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार तथा अंग्रेजी में समाचार 7:05 पर। आज शाम 7:10 पर कविता पे आधारित कार्यक्रम आज की कविता। आज शाम 7:11 पर साप्ताहिक कार्यक्रम दर्पण। इसके अंतर्गत आज आप सुन पाएंगे एआर रहमान के संगीत पर फिल्म लगन से आशा भोसले और उदित नारायण, जोधा अकबर फिल्म से एआर रहमान, जाने तू या जाने ना फिल्म से अनुपमा देशपांडे, बेनी दयाल, सतीश चक्रवर्ती, नरेश अय्यर, दर्शना तन्वी और श्वेता भरगवे के आवाजों में चंद फिल्मी गीत। शाम 7:45 पर आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार तथा रीजनल न्यूज 7:50 पर। रात्रि 8 कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत में आनंद ले पाएंगे आप श्रोता द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए चंद सदाबहार पुराने नगमे। आज रात 8:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित स्पोर्ट्स स्क्रीन, तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा न्यूज 8 रात्रि 9। तो श्रोता, ये थे हमारे केंद्र से आज शाम प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारियां। आइए अब आपको कल यानी 3 अक्टूबर 2026 को प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों से अवगत करवाते हैं। रोजाना की तरह हमारा समारोह होगा कल दोपहर 2 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित मिट्टी न्यूज के साथ तथा 2:15 पर दोपहर समाचार। कल दोपहर 3:30 पर दैनिक कार्यक्रम मेरी बात। कल दोपहर 3:50 पर आधुनिक हिंदी फिल्मी गीत का कार्यक्रम गीत मंजरी। कल दोपहर 4:45 पर आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार तथा अंग्रेजी में समाचार 4:55 पर। कल शाम 5:30 पर दैनिक मुख्य सूचना मनपा में। कल शाम 6:30 पर कार्यक्रम नरिमसरा। 6:33 पर कार्यक्रम चरोखा। कल शाम 6:44 पर मनपा कार्यक्रम शेदुलेरिम। इसके अंतर्गत कल आप सुन पाएंगे स्वर्गीय लामालुंगता नुर्वो और साथियों द्वारा शेदन चंडी।

ला मैनेजर शाम 7 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार तथा अंग्रेजी में समाचार 7:05 पर, कल शाम 7:10 पर साप्ताहिक कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। इसके अंतर्गत कल आप सुन पाएंगे खनुडोबर जांगबो जिला अस्पताल तवांग के डॉक्टर तेंजिन कुमगा एमएस के साथ हुए एक भेंटवार्ता। कल शाम 7:45 पर आकाशवाणी के टनगर केंद्र से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार तथा रीजनल न्यूज 7:50 पर, कल रात 8:15 पर आकाशवाणी के टनगर केंद्र से अनुप्रसारित अरुणाचल न्यूज रील, रात्रि 8:30 पर स्पोर्ट्स स्किन, तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा न्यूज 9 रात्रि 9 बजे जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। तो श्रोताओ, ये थे हमारे केंद्र से कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त विवरण। इसी के साथ ही आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है, समय रात्रि के 6:20 होने वाले हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन पाएंगे मनपा में, कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें।

मीडियम वेब किलार क्या चलने के लिए थी मीटर जारी करने के लिए चीनी का उस आकाशवाणी ताऊंगी बोल लंगे लंबे दिख तो से क्रोने कर्मा खिलौनी दान नमीन वो तो ये दन लेरिम कोसोतर देश उत लेरिमा ताऊंग कुन पक उम्जे गेलों जम्बसनम से गोटी नाओ चुनचक सुंबनिंग मनला सनासा

们这些话知道给我们的太阳们送我去吗？要我混了

0: lanjena ta ta sedon lerima tawang kunpak umze kelong jambasum se kotiso kinchak sumba ning mal sanamur lanjena utamche agashwani tawang kyasinjuso deshnupti manpak lerim banang chasang tuidur lanjena nupti tuse nisondo da yupu lerim agashwani tilekya kyasinjuso na hindi kasinjurning tuse nisning karma lengache inji kasinjusana sa
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जापान में एशियाई खेलों में आज भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही भारत ने लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। वहीं भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने पुरुषों के फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। सुजीत कलकल ने अपनी इस जीत को देश के नाम समर्पित किया।
2: मैं सभी देशवासियों को धन्यवाद करता हूँ, उनकी दुआओं से ये मेडल आया।
3: यही सोच के उतरे थे मैट पे कि भाई देश के लिए गोल्ड लाना है, और आखिरी तक मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी और भगवान की दया से गोल्ड आया देश के लिए। अपने देशवासियों को डेडिकेट करता हूँ क्योंकि उनकी दुआ ही सबसे ज्यादा काम आती है।
1: पुरुष मुक्केबाजी के 80 किलोग्राम वर्ग में अंकुश पंघाल ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला मुक्केबाजी के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुडा ने नियन चेन चेन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर अपना पहला स्वर्ण जीता। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य सहित 76 पदकों के साथ पांचवें स्थान पर हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बहादुर भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मछार से बात की। कैप्टन स्मिथ मछार ने दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट में अपने सह पायलट के हमले को नाकाम करते हुए 180 लोगों की जान बचाई थी। प्रधानमंत्री ने उनकी बहादुरी की सराहना की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया।

उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम नई दिल्ली स्थित गांधी स्मृति में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम के दौरान जाने माने गायकों और स्कूली विद्यार्थियों ने भक्ति गीत गाए। विश्वभर में स्थित भारतीय दूतावासों और उच्चायोगों ने भी आज महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर उनके सत्य, अहिंसा और शांति के संदेश को याद किया। चीन में भारतीय राजदूत विक्रम दौरेस्वामी ने भारतीय समुदाय और स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों के साथ पेइचिंग में महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। जापान में भारत की राजदूत नागुमा मलिक और भारतीय समुदाय के सदस्यों ने टोक्यो के एडोगावा में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित। इस कार्यक्रम में अंत्योदय, स्वच्छता और समाज सेवा के उनके आदर्शों को दर्शाया गया। पाकिस्तान, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बहरीन और दक्षिण कोरिया में भी इसी तरह के स्मृति कार्यक्रम आयोजित किए गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक व्यापार विकृतियों को दूर करने के लिए विश्व व्यापार संगठन WTO के अनुरूप दृष्टिकोण अपनाने का

आह्वान किया है। श्री गोयल ने अमरीका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन दिवस पर यह बात कही। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसकी घरेलू मांग पर आधारित अर्थव्यवस्था 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करती है। उन्होंने कहा कि भारत डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है, जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में विश्वसनीय कड़ी है। महाराष्ट्र निवेश शिखर सम्मेलन में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में 85 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्तावित निवेश से संबंधित 67 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। श्री फडणवीस ने राज्य को प्रमुख निवेश स्थल बनाने के उद्देश्य से इन्वेस्ट महाराष्ट्र मंच का भी शुभारंभ किया। त्रिपुरा के राज्यपाल इंद्र सेना रेड्डी नलू ने एनसीसी कैडेट से एकता, अनुशासन और निस्वार्थ सेवा के आदर्शों पर आधारित मजबूत और एकजुट भारत बनाने में योगदान देने का आग्रह किया है। राज्यपाल ने आज नरसिंहगढ़ के टीआईटी संस्थान में विशेष राष्ट्रीय एकता शिविर वीर विक्रम एकता कैंप का उद्घाटन किया। इसका आयोजन 13 त्रिपुरा बटालियन एनसीसी ने किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: For farmers in the Rayalaseema region of Andhra Pradesh, Ms. Sitaraman laid the foundation stone for the Rayalaseema Global Horticulture Hub project and the Indian School of Agriculture at Madanapalle in Annamaya district today. Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu and Deputy Chief Minister Pawan Kalyan were present on the occasion. Speaking at the event, the Finance Minister said the centre and the state are working together to develop Andhra Pradesh as a major horticulture centre. The mortal remains of PIB and CBC ADG Dr. Angam Pame and Doordarshan Aizawl Director News Nampibo Marinmai, who died in an accident near Satik village in Mizoram yesterday, were bid farewell in Aizawl today before being taken to Manipur for their final rites. Speaking at the farewell ceremony, Home Minister K. Sapadanga expressed condolences to the bereaved families and said the Mizoram government is ready to extend any assistance they might need. He also acknowledged the duo's contribution to the media sector. The Central Bureau of Narcotics, Jaipur, has seized more than 1 kilogram of hydroponic weed concealed in an international parcel from Thailand at the Foreign Post Office, Jaipur. And that is the end of this news bulletin.
1: श्रोता भी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारण अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 7:10 हो गए हैं। लीजिए श्रोता, प्रस्तुत है कविता पर आधारित कार्यक्रम आज की कविता। इस कार्यक्रम में आज आप सुने एलियट स्कूलर्स होम के छात्र टशी विजर से हिंदी में कविता। कविता का शीर्षक है एक माँ की बेवसी।
2: नमस्कार सभी को, मेरा नाम टशी वेजर है। मैं एलिस स्कॉलर होम का छात्र हूँ और मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। मैं आज आप सभी के लिए एक कविता पढ़ना चाहूँगा और मेरे कविता का नाम है एक माँ की बेबसी। ना जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह खेलने हमारे साथ। रतन जो बोल नहीं सकता था खेलता था हमारे साथ। एक टूटे खिलौने की तरह देखने में हम बच्चों की ही तरह था वह भी एक बच्चा। लेकिन हम बच्चों के लिए एक अजूबा था क्योंकि हमसे भिन्न था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे क्योंकि समझ नहीं पाते थे। उसकी घबराहटों को ना इशारों में कही उसकी बातों को ना उसकी बेवित आँखों में हर समय दिखती। उसके अंदर की छटपटाहटों को कितनी देर वह रहता। पास बैठती उसकी माँ निहराती रहती उसका खेलना। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ। उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं याद आती। रतन में अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। धन्यवाद।
1: श्रोता भी आपने कविता पर आधारित कार्यक्रम आज की कविता के अंतर्गत एलियट स्कूलर्स होम के छात्र टशी वेजर से हिंदी में कविता सुना। कविता का शीर्षक था एक माँ की बेबसी। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 7:12 हो गए हैं। लीजिए श्रोता, प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम दर्पण। आज इस कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे एआर रमन के संगीत पर चंद फिल्मी गीत। तो आइए श्रोता, कार्यक्रम का पहला गीत सुनते हैं फिल्म लगन से आशा भोसले और उदित नारायण की आवाजों में। गीतकार जावेद अख्तर, संगीत दिया है ए आर रहमान ने।

आपने दिल तेरे फिल्म से सुखवेंद्र सिंह और सपना अवस्थी की आवाजों में गीत का आनंद लिया। आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं। इशात कामिल के रचे पर फिल्म हाईवे से ए आर रमन की आवाज में।

नायक फिल्म से आए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में। इस गीत के रचयिता आनंद बख्शी और संगीतकार है ए आर रमन।

नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बहादुर भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार से बातचीत की। कैप्टन स्मिथ मच्छार ने अपने सह पायलट के हमले को नाकाम कर फ्लाई दुबई की दुबई से तेल अवीव जा रही उड़ान से सवार 180 लोगों की जान बचाई थी। कैप्टन मच्छार ने प्रधानमंत्री को घटना के दौरान उनके अनुभव के बारे में विस्तार से बताया और ये भी बताया है कि उस समय उन्होंने साहस किस बात से प्राप्त की थी। प्रधानमंत्री ने उनके साहस की सराहना की है और उन्हें शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने कहा है कि पूरा देश उनके लिए प्रार्थना कर रहा है। उन्होंने कहा कि कैप्टन स्मिथ के साहस, सोच-पोच और धैर्य ने कई लोगों की जान बचाई है। प्रधानमंत्री ने कैप्टन स्मिथ के जज्बे की सराहना करते हुए कहा है कि देश गर्व से कह सकता है कि भारतीय वे लोग नहीं है जो दूसरों की जान लेते हैं, बल्कि वे हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल राज केटी पटनायक ने महात्मा गांधी की 157वीं जयंती के अवसर पर राज्यवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि स्वच्छ भारत दिवस के रूप में मनाया जाने वाला ये अवसर सभी को महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलने के लिए प्रेरित करता रहेगा। राज्यपाल ने कहा है कि महात्मा गांधी ने अपने पूरे जीवन में सत्य, अहिंसा, शांति और स्वच्छता के मूल्यों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि गांधी जयंती केवल स्मरण का दिन नहीं है, बल्कि ये सत्य, ईमानदारी, आत्मनिर्भरता तथा मानव सेवा के आदर्शों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को फिर से मजबूत करने का अवसर है। राज्यपाल ने कहा कि महात्मा गांधी का मानना था कि किसी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसके लोगों में निहित होती है, विशेषकर उनके युवाओं में। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने अपने जीवन और कार्य के माध्यम से पीढ़ियों को साहस, अनुशासन और उद्देश्य की भावना के साथ व्यापक जनहित के लिए कार्य करने की प्रेरणा दी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने लोगों से महात्मा गांधी की शांति और अहिंसा के मार्ग पर चलने का आह्वान किया। वे आज ईटानगर के स्टेट बैंक एट हॉल में स्वच्छता ही सेवा 2026 के तहत आयोजित स्वच्छ भारत दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री खांडू ने स्वच्छता बनाए रखने और स्थानीय समुदाय को स्वच्छ एवं स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी भी महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया है। उन्होंने गांधी जयंती के अवसर पर नागरिकों से महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा, सादगी और सेवा के आदर्शों को अपनाने का आह्वान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वच्छ जीवन शैली के प्रति जागरूकता अभियान को विभिन्न क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए स्वच्छता वाहन का औपचारिक शुभारंभ भी किया। उन्होंने समारोह में मौजूद विद्यार्थियों और स्वयंसेवकों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज ईटानगर नगर निगम IMC की तकनीक आधारित पहल IMC ऐप का शुभारंभ किया। इस ऐप का उद्देश्य कचरा संग्रहण व्यवस्था को अधिक स्मार्ट, तेज और प्रभावी बनाना है। ऐप के माध्यम से कचरा उठाने वाले वाहनों की लाइव ट्रैकिंग की जा सकेगी। इसके अलावा लोग कचरे से भरे या ओवरफ्लो हो रहे कूड़ेदानों की सूचना भी दे सकेंगे। ऐप में पहले और बाद की तस्वीरें दर्ज करने की सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे शिकायत किए जाने और कचरे को हटाए जाने की निगरानी की जा सकेगी और समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान होगी। अरुणाचल प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने बाधवानी AI के तकनीकी सहयोग से ईस्ट सियांग जिले के रुकसिंग, पासीघाट और मोबो ब्लॉक्स में 3 बैचेस में 3 दिवसीय प्रशिक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया। प्रशिक्षण में नवजात शिशु एंथ्रोपोमेट्री AI टूल और घर आधारित नवजात शिशु देखभाल यानी होम बेस्ड न्यू बोर्न केयर को शामिल किया गया। इस पहल के तहत बाधवानी AI द्वारा विकसित AI सक्षम एप्लीकेशन को पेश किया गया है, जो अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को 42 दिन तक के आयु के नवजात शिशुओं की निगरानी में सहायता करेगा। प्रशिक्षण में रुकसिंग, पासीघाट और मोबो ब्लॉक्स की 108 आशा कार्यकर्ताओं और 15 आशा फैसिलिटेटर्स के साथ साथ ईस्ट सियांग जिले के जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। रूट्स आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट के सदस्यों ने

ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात्रि के 8 बज चुके हैं। लीजिए श्रोता, प्रस्तुत है कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत में। आप श्रोता द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए चंद सदाबहार पुराने नगमे। तो आइए श्रोता, कार्यक्रम का पहला नगमा सुनते हैं फिल्म बंदे हाथ से, किशोर कुमार की आवाज में। इस गीत को बोल दिया है आर डी बर्मन ने और संगीत दिया है मजरूर सुल्तानपुरी ने। गीत की फरमाइश की है दुर्गा सेलू से, चंदू कुलकर्णी, हेमलता और सीआर कुलकर्णी ने।

अनुमलिकी संगीत पर कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, फिल्म दूध का कस से मोहम्मद अजीज और अनुराधा पोडवाल की आवाजों में। इस गीत की फरमाइश की है बुलदना इस्लामपुर महाराष्ट्र से सदैव दामोदर, शशिकला दामोदर, सुमित कुमार दामोदर, साधना पवल पटेल, अमोल मनकर, शोभताय मनकर, श्लोक और दीपाली ने।

आरडी बर्मन के संगीत पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगली फरमाइश का गीत फिल्म मेरे जीवन साथी से किशोर कुमार की आवाज में। इस गीत की फरमाइश की है चंडीगढ़ से सतीश अनिजा भीमलानीजा और दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह ने।

श्रोता, ये आप सुनते हैं कार्यक्रम में एंडी फरमेश के गीत फिल्म उमरो जान से आशा भोसले की आवाज में। इस गीत को बोल दिया है शारा ने, संगीत दिया है खयम ने, गीत की फरमाइश की है रिंकनी छत्तीसगढ़ से, दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने।

जिसके तहत हमने पेश किए आप सभी के व्हाट्सएप फरमाइश पर आधारित कुछ बेहद प्यारे सदाबहार नगमे। अगर आप भी इस तरह की महफिल में शामिल होना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक

पता, गीत के बोल और फिल्म का नाम लिखना ना भूलें, ताकि आपकी पसंद हमारे जरिए सब तक पहुंच सके। इसी के साथ आपकी फरमाइश पर आधारित हमारा यह रोमानी और यह दोबारा कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत यही समाप्त होता है। फिर मिलेंगे कुछ और हसीन यादों, कुछ और नगमों के साथ। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात्रि के 8:30 होने वाले हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन पाएंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। एशियाई खेलों में जारी रोमांच और खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन के साथ खेल जगत की हर अहम हलचल पर है हमारी पैनी नजर। तो शुरू करते हैं आज का सफर। सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। एशियाई खेलों में भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहाइन, परवीन हुड्डा और अंकुश पंघाल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदकों की हैट्रिक लगाई। कुश्ती में सुजीत कलकल ने स्वर्ण पदक पर लगाया दाव, यादगार वापसी कर जीता फाइनल मुकाबला। भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर जीता स्वर्ण पदक, लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 के लिए सीधे क्वालिफाई किया। महिला रिकर्व आर्चरी टीम ने दक्षिण कोरिया पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की, स्वर्ण पदक देश के नाम किया। उधर पुरुष रिकर्व टीम ने रजत पदक हासिल किया। और सेलिंग में नेत्रा कुमानन और सेपक टैकरो में भारतीय पुरुष स्क्वाड्रन टीम ने जीता कांस्य पदक। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एशियाई खेलों से, जहां भारतीय खिलाड़ियों ने आज एक के बाद एक कई पदक जीते। भारत ने आज टोटल 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। चाहे हम मुक्केबाजी की बात कर ले, कुश्ती की बात कर ले, या फिर महिला हॉकी टीम की बात हो, या फिर आर्चरी की बात हो, सब में भारत ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए देश का झंडा शान से लहराया है। शुरुआत करते हैं मुक्केबाजी से। भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहाइन ने 75 किलोग्राम, परवीन हुड्डा ने 65 किलोग्राम और अंकुश पंघाल ने 80 किलोग्राम वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में देश के लिए स्वर्ण पदकों की हैट्रिक लगाई। सुनते हैं इन मुकाबलों पर एक खास रिपोर्ट।
1: भारतीय मुक्केबाजों ने आज बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अलग अलग वर्ग में देश को पदक दिलाए। अंकुश पंघाल ने 80 किलोग्राम फाइनल में दक्षिण कोरिया के किम मिनसियोंग को 4-0 से हराकर देश के लिए स्वर्ण पदक से अपना अभियान समाप्त किया।
2: स्प्लिट डिसीजन से ही सही, लेकिन अंकुश पंघाल ने भारत को एक और गोल दिलाया और बॉक्सिंग में भारत के लिए आज एक हैट्रिक है। पहले भारतीय बेटियों ने, उसके बाद युवा 21 वर्षीय अंकुश ने भारत के नाम एक और गोल्ड मेडल।
1: अंकुश ने जोरदार पंच लगाते हुए पहला राउंड 4-1 से जीता। दूसरे राउंड में भी उनका प्रदर्शन बेहतर रहा और उन्होंने 1-2 कॉम्बिनेशन और काउंटर पंच के साथ 5-0 से जीत हासिल की। अंकुश ने इस जीत के बाद कहा कि उन्हें अपनी मेहनत पर पूरा विश्वास था।
3: अच्छा लग रहा है गोल्ड जीत के, और दिमाग में तो यही था कि हाँ बाउट जीतनी है कैसे भी कैसे। प्रेशर तो नहीं था, पर लेकिन ये था कि खुद की जो मेहनत की थी उस पर विश्वास था कि हाँ गोल्ड लेना है। मोटिवेशन तो है कि वहाँ पे भी गोल्ड आया था और यहाँ पे भी गोल्ड है, स्पोर्ट बनाए रखे और हम और भी आगे जाएंगे।
1: उधर लवलीना बोरगोहाइन और परवीन हुड्डा ने अपने अपने फाइनल मुकाबलों में जीत दर्ज करते हुए महिला मुक्केबाजी के स्वर्ण के लिए देश का 12 साल का इंतजार समाप्त कर दिया। दोनों ने मजबूत दावेदार मानी जा रही अपनी प्रतिद्वंदियों के खिलाफ अलग अलग अंदाज में शानदार जीत दर्ज की। भारत की सबसे सफल मुक्केबाजों में शामिल ओलंपिक पदक विजेता लवलीना ने अपने 29वें जन्मदिन को खास बनाते हुए चीन की बाओ जी यी को 5-0 से हराया। उन्होंने इसके साथ ही पिछले एशियाई खेलों में जीते रजत पदक का रंग भी बदल दिया।
2: लास्ट 10 seconds, द गोल्ड, इट विल बी इट, द फाइनल राउंड कंक्लूड्स इन द ब्लू कॉर्नर, लवलीना बोरगोहाइन।
1: इस जीत के बाद लवलीना ने कहा कि ये पदक मेरे लिए बहुत खास है,
4: बहुत ज्यादा स्पेशल है ये मेडल मेरे लिए। कहीं ना कहीं मैं बॉक्सिंग छोड़ने भी वाली थी, उसके बाद से फिर से मेंटली स्ट्रांग होके आना और जीतना वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात, और मैं सोच के आई थी कि इस बार मुझे बर्थडे पे गोल्ड मेडल ही चाहिए। मेरा बहुत ज्यादा वेट कंट्रोल नहीं रहता है, लास्ट के 2-3 दिन ही 1-2 केजी कम करना पड़ता है, लेकिन आज तो जरूर गोल्ड मेडल की वजह से जरूर स्वीट खाऊंगी।
1: परवीन ने इसके बाद पेरिस ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता चीनी ताइपे की नियन चिन चेन को

0: कड़े मुकाबले में 3-2 से हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता।
1: प्रवीण का पंच पड़ा है गोल्ड मेडल पे। प्रवीण हुड्डा ने भारत की झोली में इस बार ब्रॉन्ज नहीं गोल्ड मेडल डाला है।
2: गेम्स 2026 का 13वां गोल्ड मेडल प्रवीण हुड्डा ने जीता है।
0: इस जीत के साथ लवलीना और प्रवीण एशियाई खेलों में मुक्केबाजी का स्वर्ण जीतने वाली भारतीय महिला मुक्केबाजों की विशिष्ट श्रेणी में शामिल हो गई हैं। उनसे पहले मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम ने 2014 के इंचियोन एशियाई खेलों में 51 किलोग्राम फ्लाईवेट वर्ग का स्वर्ण पदक जीता था। आईची नागोया में

0: एशियाई खेलों में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाजी प्रदर्शन 2010 के ग्वांगझोऊ खेलों में रहा था, जहां भारतीय टीम ने कुल 9 पदक हासिल किए थे। इनमें 2 स्वर्ण, 3 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल थे। महाद्वीपीय प्रतियोगिता में भारतीय मुक्केबाजों का ये शानदार प्रदर्शन पिछले महीने ग्लासगो में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में रिकॉर्ड तोड़ अभियान के बाद आया है। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
1: लवलीना हो, अंकुश हो या परवीन हो, बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए आज उन्होंने एक के बाद एक भारत को 3 स्वर्ण पदक दिलाए। मुक्केबाजी से चलते हैं अब कुश्ती की ओर, जहां सुजीत ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए भारत को एक और स्वर्ण पदक दिलाया। भारतीय रेसलर सुजीत कलकल ने एशियाई खेलों के कुश्ती स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। रोमांचक फाइनल में सुजीत ने तजाकिस्तान के अब्दुल मजीद कुदियेव को 10-9 से हराया। सुनते इस मुकाबले पर एक खास रिपोर्ट।
2: फाइनल मुकाबले में सुजीत ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए कुश्ती में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया।
3: किताबों में लिखा जाएगा, सुजीत कलकल के नाम के साथ चलता रहेगा। किस तरह से ट्रेल कर रहे थे, लेकिन कैसी वापसी की और एक गोल्ड मेडल भारत के लिए दिलवा दिया। सुजीत कलकल, असंभव वापसी को उन्होंने यहाँ पर साकार किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई भारत के लिए एक और गोल्ड।
2: उन्होंने पुरुषों की फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम कैटेगरी में शानदार वापसी करते हुए ये जीत हासिल की। मैच के ज्यादातर समय 23 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी 2-9 से पीछे चल रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने मैच के आखिरी पलों में लगातार 8 पॉइंट हासिल करके जबरदस्त वापसी की और कुदियेव को हराकर इस एशियन गेम्स में भारत के लिए रेसलिंग का पहला स्वर्ण पदक सुनिश्चित किया। कलकल की ये जीत आईची नागोया में उनके शानदार प्रदर्शन का नतीजा थी। इससे पहले भारतीय रेसलर ने अफगानिस्तान के सैयद उमर जजई के खिलाफ अपनी चुनौती शुरू की और शुरुआत में 0-3 से पिछड़ गए। इसके बाद कलकल ने पुश आउट और शोल्डर थ्रो से पॉइंट हासिल करके मैच का रुख बदल दिया और 5-3 की बढ़त बना ली। फिर उन्होंने एक और थ्रो और रोल से 4 और पॉइंट हासिल किए, जिससे उन्होंने 13-3 से तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर जीत दर्ज की और क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके बाद कलकल ने ईरान के अब्बास इब्राहिम जादे सावतकोही के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया और बिना कोई पॉइंट गवाए तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर जीत हासिल की। सेमीफाइनल मैच उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उन्हें जापान के ओलंपिक चैंपियन कोतारो कियोका का सामना करना था। हालांकि कलकल पहले पीरियड के अंत में 0-2 से पीछे थे, लेकिन दूसरे पीरियड में उन्होंने वापसी करते हुए 3 पॉइंट हासिल किए, जबकि कियोका सिर्फ 1 पॉइंट ही बना पाए। मैच 3-3 से ड्रॉ पर खत्म हुआ, इसीलिए कलकल ने तय नियमों के आधार पर जीत हासिल की और रोमांचक फाइनल को भी अपने नाम कर लिया। फरहत नाज, स्पोर्ट्स कैन।
1: आइए सुनते हैं जीत के बाद सुजीत ने क्या कुछ कहा।
4: मैं सभी देशवासियों को धन्यवाद करता हूं, उनकी दुआओं से ये मेडल आया।
5: देखो, यही सोच के उतरे थे मैट पे कि भाई देश के लिए गोल्ड लाना है, और आखिरी तक मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी और भगवान की दया से गोल्ड आया देश के लिए। अपने देशवासियों को डेडिकेट करता हूं, क्योंकि उनकी दुआ ही सबसे ज्यादा काम आती है।
1: मुक्केबाजी हो, कुश्ती हो और उसके बाद अब बात हॉकी पर, जहां भारतीय महिला हॉकी टीम ने एक और शानदार प्रदर्शन किया और भारत को एक और स्वर्ण पदक दिलाया। एशियन गेम्स में भारतीय महिला हॉकी टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 44 साल का सूखा खत्म कर दिया है। फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने चीन को 1-0 से हराकर गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
6: फाइनल मैच में भारतीय टीम ने शुरुआत से ही चीन पर दबाव बनाने का प्रयास किया। मैच के 6 मिनट में बलजीत कौर को ग्रीन कार्ड मिला, लेकिन 10वें मिनट में अपना 200वां इंटरनेशनल मैच खेल रही लाल रेमसी यामी ने बेहतरीन गोल दागते हुए भारत को 1-0 के बढ़त दिला दी। भारतीय टीम को इसके बाद अपनी बढ़त 2 गुना करने का सुनहरा मौका मिला, लेकिन पेनल्टी कॉर्नर को टीम गोल में तब्दील नहीं कर सकी। हालांकि मजबूत डिफेंस के दम पर भारतीय टीम पहले क्वार्टर फाइनल में अपनी बढ़त को बनाए रखने में सफल रही। दूसरे क्वार्टर में चीन ने वापसी करने की कोशिश की और आक्रामक खेल दिखाया। चीन को जल्द ही पेनल्टी स्ट्रोक मिला, लेकिन सविता पुनिया ने दमदार बचाव करते हुए चीन को बराबरी करने से रोक दिया। हालांकि इसके बावजूद चीन का आक्रामक खेल लगातार जारी रहा, लेकिन वह भारतीय टीम के मजबूत डिफेंस को नहीं भेद सके। तीसरे और चौथे क्वार्टर में भी भारतीय टीम के डिफेंस ने लगातार शानदार प्रदर्शन किया और चीन को गोल करने का कोई मौका नहीं दिया। तीसरे क्वार्टर में कप्तान

0: सलीमा टेटे के चोटिल होने के बावजूद भारतीय टीम ने चीन को हावी होने का मौका नहीं दिया। चौथे क्वार्टर में सलीमा मैदान पर वापस लौटी और उनकी अगुवाई में टीम अपने दबदबे को कायम रखते हुए गोल्ड मेडल जीतने में सफल रही। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
1: और श्रोताओं, आपको बताएं, भारतीय महिला हॉकी टीम ने आखिरी बार एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल 1982 में जीता था। वहीं 1998 में टीम ने सिल्वर और 2018 में भी फाइनल तक का सफर तय किया था। भारतीय महिला टीम का प्रदर्शन पूरे टूर्नामेंट में शानदार रहा। गोल्ड जीतने के साथ ही भारतीय टीम ने लॉस एंजलिस में होने वाले ओलंपिक 2028 के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। और श्रोताओं, उधर भारतीय पुरुष टीम का सामना कल स्वर्ण पदक मुकाबले में मलेशिया से होगा, मतलब कल भी एक और स्वर्ण पदक की उम्मीदें होंगी। और अब बात तीरंदाजी पर। भारत की महिला रिकर्व आर्चरी टीम ने दक्षिण कोरिया को हराकर स्वर्ण पदक देश के नाम किया। भारतीय टीम की 10 बार की चैंपियन दक्षिण कोरिया पर यह ऐतिहासिक जीत है। महिला रिकर्व आर्चरी टीम का एशियन गेम्स इतिहास में यह पहला स्वर्ण पदक है। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
2: इंडिया विल विन गोल्ड, इंडिया हैज वन गोल्ड इन द वुमेन्स टीम रिकर्व इवेंट, अ फीट नेवर डन बिफोर। सेलिब्रेट दिस विन, ब्रीथ इन दिस मोमेंट, हिस्ट्री हैज बीन क्रिएटेड। फर्स्ट टाइम चैंपियंस, टू यंगस्टर्स इन कीर्ति एंड कुमकुम अलोंग विद अंकिता भगत आर स्टेपिंग ऑन टू द प्राइम पोडियम विद गोल्ड।
3: भारत की महिला रिकर्व आर्चरी टीम ने फाइनल में मजबूत कोरियाई टीम को 5-3 से हराकर ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता। दोनों टीम ने 54-54 का स्कोर करके सेट बराबर कर दिया और हर एक को एक पॉइंट मिला। कोरिया ने दूसरे सेट की शुरुआत 10-9 और 9 के स्कोर के साथ जोरदार तरीके से की। तीसरे सेट में कोरिया ने 8 के साथ शुरुआत की, लेकिन फिर अगले दो शॉट में 10 और 9 के साथ वापसी की। अपने अगले तीन शॉट में कोरिया ने 3 बार 8 का स्कोर किया, जिससे भारत को सेट जीतने का एक मजबूत मौका मिला। इसके बाद भारत ने 8 के साथ शुरुआत की, फिर 9 के साथ और आखिर में कुमकुम ने 10 का स्कोर करके तीसरा सेट अपने नाम कर लिया, जिससे टीम 4-2 से आगे हो गई। चौथे सेट में कोरिया ने 2-9 के स्कोर से शुरुआत की, उसके बाद 10 का स्कोर किया। भारत ने 8-8 और फिर 9 के शॉट लगाए। इसके बाद कोरिया ने 8-9 और 9 के शॉट लगाए। कीर्ति ने 9 का शॉट लगाकर शुरुआत की और अंकिता ने 1 और 9 का शॉट लगाया, जिसके बाद कुमकुम ने 10 का स्कोर करके सेट बराबर कर दिया, जिससे 5-3 से जीत पक्की हो गई। कुमकुम मोहोद, अंकिता भक्त और कीर्ति शर्मा ने धैर्य के साथ साहसिक खेल का प्रदर्शन करते हुए भारत को पदक दिलाया। मनोज, स्पोर्ट्स कैन।
1: आइए सुनते हैं पदक विजेता अंकिता ने इस जीत के बाद क्या कुछ कहा।
4: हम लोग बहुत खुश है कि हम लोगों ने पहली बार एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। इसी दिन के लिए पिछले 2-3 महीने से बहुत मेहनत की है। साई बहुत सपोर्ट करती है हम लोगों को।
1: हर भारतीय पुरुष रिकर्व तीरंदाजी टीम ने रजत पदक जीता। फाइनल में 9 बार की चैंपियन दक्षिण कोरियाई टीम ने भारत को हराया। भारत के नीरज चौहान, यशदीप भोगे और धीरज बोमदेवरा की तिकड़ी को दक्षिण कोरिया की टीम ने 1-5 से हराया। और अब बात सेपक टैकरों पर। भारतीय पुरुष स्क्वाड्रन टीम ने एशियन गेम्स के सेपक टैकरों स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। सेमीफाइनल मुकाबले में उन्हें जापान से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। एशिया में ये भारत का सेपक टैकरों में तीसरा पदक है। और अब बात सेलिंग पर। भारत की सेलर नेत्रा खुमाना ने महिलाओं की डिंगी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। दो रेस की फाइनल सीरीज के बाद नेत्रा ने 14 पॉइंट के साथ फिनिश किया। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य सहित 76 पदकों के साथ 5वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। और अब बात क्रिकेट पर। एशियाई खेलों में कल भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का सामना स्वर्ण पदक मुकाबले में पाकिस्तान से होगा। सेमीफाइनल में भारत ने श्रीलंका को 124 रन से और पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 6 विकेट से हराया था। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपने सुझाव sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैकड़ों लोगों की जान बचाने वाले फ्लाई दुबई के पायलट कैप्टन स्मित मच्छर की बहादुरी की सराहना की। कहा, भारतीय जान लेते नहीं बल्कि दूसरों की जान बचाते हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर राष्ट्र आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और एशियाई खेलों में भारत ने 44 वर्ष बाद महिला हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। पहलवान सुजीत कलकल, मुक्केबाज परवीन हुडा, लवलीना बोरगोहाइन और अंकुश पंघाल ने भी स्वर्ण पदक जीते। भारत 16 स्वर्ण सहित कुल 76 पदकों के साथ पदक तालिका में पांचवें स्थान पर पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कैप्टन स्मित मच्छर से फोन पर बात की। श्री मोदी ने इसराइल जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट को क्रैश कराने की कथित कोशिश को नाकाम करने में कैप्टन स्मित मच्छर की बहादुरी और सूझबूझ की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय वे लोग नहीं हैं जो दूसरों की जान लेते हैं, बल्कि वे हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं। श्री मोदी ने कैप्टन मच्छर की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने पलक झपकते ही जो फैसला लिया, उससे सैकड़ों यात्रियों की जान बच सकी।
1: आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया, और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूं।
0: बुधवार को दुबई से तल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कॉकपिट में सहयोगी पायलट के हमले में कैप्टन मच्छर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। फ्लाइट में 174 यात्री सवार थे, जिनमें 27 बच्चे भी शामिल थे। पायलट का अभी संयुक्त अरब अमीरात के अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। अस्पताल से प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में कैप्टन मच्छर ने कहा कि 17 वर्ष के फ्लाइंग अनुभव ने उन्हें हालात की गंभीरता को समझने और तुरंत कार्रवाई करने में मदद की। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि वे देश से दूर हैं लेकिन देश की संस्कृति से नहीं। प्रधानमंत्री ने कैप्टन स्मित मच्छर के इलाज का इंतजाम करने के लिए सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की सरकारों का आभार प्रकट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं कि मन की बात से इस दृष्टिकोण को कैसे साकार किया गया है।
2: 2014 अक्टूबर से आकाशवाणी पर शुरू हुए मन की बात कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से संवाद करते हैं। यह कोई नीतिगत संबोधन नहीं है। इसमें किसी आम नागरिक द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को सामने लाया जाता है, किसी योजना को सरल और सहज भाषा में समझाया जाता है और स्वच्छता, जल संरक्षण या आत्मनिर्भरता जैसे विषयों में लोगों से सहयोग की अपील की जाती है। रेडियो उन जगहों तक भी पहुंचता है जहां संचार का कोई और माध्यम नहीं पहुंच पाता। अप्रैल 2023 में मन की बात के 100वें एपिसोड में अपने विचार साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा था,
3: मन की बात में पूरे देश के कोने कोने से लोग जुड़े, हर आयु वर्ग के लोग जुड़े। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, स्वच्छ भारत आंदोलन हो, खादी के प्रति प्रेम हो या प्रकृति की बात, आजादी का अमृत महोत्सव हो या फिर अमृत सरोवर की बात, मन की बात जिस विषय से जुड़ा वो जन आंदोलन बन गया।
2: मीडिया से बातचीत में लखनऊ के विभिन्न हिस्सों से श्रोताओं ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को एक दूसरे से और देश से जुड़ने का एक नया माध्यम प्रदान किया है।
4: प्रधानमंत्री जी ने जो भी पहल की है देश के हित में की है, तो हमें उससे भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि एक घर का गार्जियन जैसे परिवार का गार्जियन को समझाना चाहिए। आभार का प्रधानमंत्री हमें समझा रहा है, तो हमें उसमें अमल करना चाहिए।
5: देश में बहुत लंबे समय बाद

0: रेडियो की उपयोगिता बढ़ी है। प्रधानमंत्री जी ने रेडियो के माध्यम से अपना संदेश गांव के उन नौजवानों तक पहुंचाया जो इस सूचना प्रौद्योगिकी के दौर में पिछड़ गए थे और उनकी बात वो कर रहे हैं।
1: आज करोड़ों भारतीय प्रधानमंत्री के इस संबोधन को सुनते हैं। एक आकांक्षी भारत उत्सुकता के साथ उन कहानियों को सुनता है जिनमें बदलाव के वास्तविक अनुभव सामने आते हैं। मन की बात ने सार्वजनिक संचार के स्वरूप को एक नया रूप दिया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। श्री गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर यह बात कही। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसकी घरेलू मांग पर आधारित अर्थव्यवस्था 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करती है। एक रिपोर्ट।
3: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का प्रावधान इस व्यवस्था की महत्वपूर्ण गारंटी है, जिसके अंतर्गत छोटे और बड़े सभी कारोबारियों के लिए समान शर्तें लागू होती हैं। जबरन मजदूरी को समाप्त करने के विषय पर श्री गोयल ने कहा कि जबरन श्रम के उन्मूलन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पूर्ण और बिना शर्त है। उन्होंने विश्व व्यापार संगठन WTO को केंद्र में रखते हुए निष्पक्ष, समान, भेदभाव रहित और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने विकासशील देशों को विकास और खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी नीतिगत गुंजाइश देने तथा सर्वसम्मति से फैसले लेने की व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया। इस बीच श्री गोयल ने ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया सहित कई देशों के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। आरजू के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया।

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम नई दिल्ली स्थित गांधी स्मृति में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान जाने माने गायकों और स्कूली विद्यार्थियों ने भक्ति गीत गाए। विश्व भर में स्थित भारतीय दूतावासों और उच्चायोगों ने भी आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर उनके सत्य, अहिंसा और शांति के संदेश को याद किया। चीन में भारतीय राजदूत विक्रम दोरईस्वामी ने भारतीय समुदाय और स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों के साथ पेचिंग में महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। जापान में भारत की राजदूत नागुमा मल्लिक और भारतीय समुदाय के सदस्यों ने टोक्यो के एडोगावा में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। पाकिस्तान, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बहरीन और दक्षिण कोरिया में भी इसी तरह के स्मृति कार्यक्रम आयोजित किए गए। खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के अध्यक्ष मनोज गोयल ने आज बताया कि नई दिल्ली के क्रॉट प्लेस स्थित खादी भवन सहित पूरे देश में विशेष छूट अभियान शुरू किया गया है। ये छूट आज से 16 नवम्बर तक उपलब्ध रहेगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि निस्वार्थ सेवा भारत की संस्कृति और सभ्यतागत मूल्यों का मूल आधार है। नई दिल्ली में आज आयोजित 11वें संत ईश्वर सम्मान समारोह

0: बाजी के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा ने नियन चिनचेन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता।
1: बहुत ज्यादा स्पेशल है ये मेडल मेरे लिए, कहीं ना कहीं मैं बॉक्सिंग छोड़ने भी वाली थी, उसके बाद से फिर से मेंटली स्ट्रांग होके आना और जीतना वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात, और मैं सोच के आई थी कि इस बार मुझे बर्थडे पे गोल्ड मेडल ही चाहिए।
0: महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर पहला स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य सहित 76 पदकों के साथ पांचवें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है।
2: दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने जानकारी दी है कि दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास गेट खोल दिए गए हैं। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा भी अब उपलब्ध है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में अगले 2 दिनों तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, आंध्र प्रदेश, केरलम और माहे में 5 अक्टूबर तक गरज चमक के साथ तूफान की आशंका है। कल लक्षद्वीप, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रह सकती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैकड़ों लोगों की जान बचाने वाले फ्लाई दुबई के पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी की सराहना की। कहा, भारतीय जान लेते नहीं बल्कि दूसरों की जान बचाते हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर राष्ट्र आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और एशियाई खेलों में भारत ने 44 वर्ष बाद महिला हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। पहलवान सुजीत कलकल, मुक्केबाज परवीन हुडा, लवलीना बोरगोहाइन और अंकुश पंघाल ने भी स्वर्ण पदक जीते। भारत 16 स्वर्ण सहित कुल 76 पदकों के साथ पदक तालिका में पांचवें स्थान पर पहुंचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम शगुन चोपड़ा विद द न्यूज एट 9।

श्रोता अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित न्यूज 8:09। ये आकाशवाणी का टॉक केंद्र है। समय रात्रि के 9:15 हो गए हैं। तो श्रोता आप समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आइए जाते जाते हम आपको अवगत करवाते हैं हमारे केंद्र से कल प्रसारित किए जाने वाले चंद कार्यक्रमों से। कल दोपहर 2:30 पर भक्ति